जोसलपाथौ नेपाल सम्ब छिन्छसौ पी खुद दिल्लाथो द्वितीय थो रेडियो नेपाल ख अन्य नादिस जिरु विपाके नेपाल भाषा या समाचार। कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोभिता गौतम सचिव खुइ खुगु विधेयक यता प्राथमिकता या लिधासा सरकार संसदले दर्ता यायगु कानून तेगु मस्यौदा सूची व कार्यतालिका संघीय संसदीय छोयागु धया दिगुदु प्रतिनिधि सभा या मेगया बैठके यी फोना कानून मन्त्री गौतम वैगु आर्थिक दह 2083-84 नीति संघीय संसदले दुत बिगु याना गुइ नेगु नुगु व गुइ खुइ गुगु संसद न्यायको विधेयक लिया कायम यानाको जानकारी बिहा दिल वेकला प्रचलित कानून या त फिङ्केगु नुगु डेकेगु लि त सक्कसिन प्यासी कथ लिचो लाकेगु याना निहजेके त प्रचलित एन्या खारेजी संशोधन संहिताकरण व एकीकरण यागु व नुगु डेकेगु विधेयक या पहिचान या त मन्त्रालय वैको आर्थिक द या त कानून निर्माण व सुधार द या कथ घोषणा यानागु ध्या दिल कानून मन्त्री गौतम संघीय संसदीय विधेयक देखे त सलह व पारित यागु प्रक्रिया त व्यवस्थित व अनुमान योग्य देका विधायकी ज्या कारवाही नियमित सुचारु व यी कथ हे पुङ्केता सभामुख संसदीय समिति या सभापति व संघीय संसद सचिवालय या त नापा मागु समन्वय याना बिता इनाप याना दिल कानून न्याय व संसदीय मामिला मन्त्री सोभिता गौतम हिग राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहाल यता नाप्लान सरकार संघीय संसदे हेता संघु सचिव खुइ खुगु विधेयक सूची ललहना दिगुदु नाप्ला ज्याझोले अध्यक्ष दाहाल सरकार संघीय संसदे दुत बिगु विधेयक तेगु ज्या जुया चङ्गु खन ले तागु लिसबिया दिल वेकल संविधान कार्यान्वयन नीति यको कानुन त देखे त व ल्य दुगु व संघीय संसद यता कार्यसूची मागु सरकार यथास गुलिफु उली याकन विधेयक पेश याए त इनाप्याना दिल अध्यक्ष दाहाल सरकार गुलिफु उली याकन विधेयक संसदीय दूत ब्युसा कानून निर्माण या ज्या राष्ट्रिय सभा पने गुली छुन ज्याख मया थुक्या धान सक्ने नादिस अध्यक्ष दाहाल सरकार गुलिफु उली याक्न यको विधेयक संसदीय दूत ब्युसा कानून देखेको ज्याखे राष्ट्रिय सभा छुन कथयागु पङ्ग मयागु वचनापा पङ्का दिल अध्ययन प्रतिनिधि सभा मिग बैठक अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन नापा स्वापुदुगु निगु महासन्धि नापा स्वापुदुगु प्रोटोकल अनुमोदन यागुदु बैठके युवा श्रम तथा रोजगार मन्त्री रामजी यादव हवया दिगु अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन या बाध्यकारी श्रम महासन्धि 2030 नापा सन् 2014 या प्रोटोकल नम्बर 29 व श्रम निरीक्षण नापा या महासन्धि 1947 नम्बर 81 या त अनुमोदन यागुदु मन्त्री यादव विशेष सेना वैदेशिक लजग्या वनी पि श्रमिक तेगु सुरक्षा श्रम शोषण या रोकथाम पीडित तेता उद्धार व पुनस्थापना श्रम निरीक्षण प्रणाली सुदृढीकरण व स्वापुदुगु निकाय दथी लिचोलाईको कथा समन्वय सम्भव यादिगुदु सलस सांसद राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम नापा स्वापुदुगु कानुन तेता यी कथ भिङका श्रमिक तेगु सुरक्षा श्रम या मागु कथ या मु व्यवस्था याना बिता इनाप याना दिगुदु सांसद श्रम नापा या महासन्धि अनुमोदन नेपा या अन्तर्राष्ट्रिय लागा श्रम मापदण्ड प्रति या पलासा अझ चुए लोहनीको अध्ययन प्रतिनिधि सभा मिगे बैठके राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग नापा सोङ्गु आयोगका अध्यक्ष प्रतिवेदन दुत बिगुदु बैठके प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह यथा कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोभिता गौतम राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग झिन्चकको अध्यक्ष प्रतिवेदन राष्ट्रिय सूचना आयोगका अध्यक्ष प्रतिवेदन 2081-82 व समावेशी आयोगका नेगु नेदय प्रतिवेदन आर्थिक दल 2081-82 सन् दुतबिया दिलसा बैठकके सभामुख डोलप्रसाद अर्याल राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल विनियोजन विधेयक राष्ट्र ऋण लोहनीगु विधेयक आर्थिक विधेयक 2083 प्रमाणीकरण याना दिगु नापाया राष्ट्रपति कार्यालय सँग वोगु पौया बेहोरा बोनानियङका दिगु खसा सभाया बैठके सांसद विष्ण सुकुम्बा सितेता मा कथम व्यवस्था मयासे बस्ती सन् चिकु गुली हाठ्या बोलङ्गु विशेष जानकारी याकुसे उमिगु ब्या चुनिगु थ्या होल्डिङ सेन्टरे दुगु नसा तोनिगु ल शिक्षा स्वास्थ्य या हाठ्या नहङ्केता सरकार नापा माग याना दिलसा बैठके प्रतिपक्षी दलया सांसद सरकार हगु लोकप्रियता जागु ज्याख व प्रचारमुखी गतिविधि केन्द्रित जुगु दोप बिसे थुज्याको गतिविधि दे देखे मफै गुह झाँका पाखे ग्वाकी गुली इलेहे
भिङ्के ता व सकल दथि भलसाङ कया दे याता समृद्धि लम्पी निहजिया केता इनाभ्याना दिल उगु बैठकके सांसद अस्थायी करार व जालादारी कर्मचारी लजगा या सुरक्षा माग या सिंहदरबारे आन्दोलन याना चोङ्गु धासे अथे येदो सिबे उपकर्मचारी तथा बेरोजगार देखि गुज्या मयाता व हाठ्या नङ्केता माग याना दिल लिपाङ्गु इले मानसिक हाठ्या ठे जागु हुने देशे आत्महत्या आत्मदह ते जागु झाँका उपया वना चोङ्गुले सांसद मानसिक स्वास्थ्य नपाए नीति भिङ्के मागु लि ब बिसे छगु सशक्त मानसिक स्वास्थ्य परिषद निशोनेता मागेना दिल सांसद तेसा देया त धङ्गु सुविधा जागु अस्पताल तेके स्वास्थ्य बिमा ज्याचो छेलाबुला याता सरकारी ध्यान कोसाला दिसे वीर अस्पताल गङ्गालाल अस्पताल व टिचिङ अस्पताल वास अङ्यागु टेन्डर प्रक्रिया भिङ्केता मागेना दिल थोए दति प्रतिपक्षी दल या सांसद तेसा मिग न प्रतिनिधि सभासँग प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह संसदीय बिया दिगु सीमा नापाया नोचु केता इनाप याना विरोध याना दिलसा वेक पिसा प्रधानमन्त्री सहायता सदने बोतिकया देशे बोलाना चोङ्गु लकस व सांसद पेसा लुहङ्गु नेसालिस बिता रुलिङ यायता सभामुख याता इनाप याना दिल प्रतिनिधि सभा मेगु बैठक वेगु साउन 14 गते बिहिबार सुतसिया जिन्छता इले चुनिगु गोसादु राष्ट्रिय सभा सांसद तेसा राज्य शक्ति लिधान स्या छु संसार गृह व नेपाली कङ्ग्रेस सभापति गगन थापा छे गेटे तगु गाडी दुवा लेता व लावामासित छक्का कारवाही या मागु धासे सरकारी ध्यान कोसाला दिगुदु राष्ट्र सभा मिगा बैठकै विशेषीले नेपाली कङ्ग्रेस सांसद कमला पन्त बर्खा जुई सात खुसी बाचल व डुबिना आपला जोखिम उपयाउना सङ्गु इले विपद व्यवस्थापन याइगु संस्था नापान हुगु नेतृत्व बी मफुगु सरकारी कमी कमजोरी दुगु तया दिगुदु सरकार वैदेशिक

या नेतृत्व विषयसँग वो श्रमिक मजदुर किसान वो बेरोजगार विषयसँग थिति सांसद विषय थ गु नोचु तया दिगु खस हथियाना प्रधानमन्त्री बालेन्द्र सहाय थासा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सुविता गौतम महान्यायाधी वक्ता कार्यालय आर्थिक द 2081-82 अध्यक्ष प्रतिवेदन सभा नापान्दुत बिया दिल राष्ट्रिय सभा मेगु बैठक 2083 साल साउन 15 गते शुक्रबार निनेसिया छताई जुया झिङ्या गुमिनेटे चोनिगु गोसादु प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह देया पर्यटन प्रवर्धन या नीति मध्येको ज्या याना चोङ्गुली होटल व्यवसाय त्यता दुःख मकासे न्योज्याता इनाप्याना दिगुदु प्रधानमन्त्री व मन्त्री परिषदका कार्यालय मिग होटल महासङ्घ नेपाल हान्या पदाधिकारी नापाजुगु सहलसँग प्रधानमन्त्री शाह निजी लगायता सरकार मागु कथन थ्या बियागुली राज्यता थगुहे ताक सेलनागु भलसा नापा ज्या याता इनाप्याना दिल प्रधानमन्त्री शाह व्यवसाय यता कानुन या पालना यासेन थगु व्यावसायिक भाला पुङ्केता ची धङ्गु मजौला होटल ते ता पर्यटन विभाग दर्ता याना कर्या दायरा वे त व सार्वजनिक निजी साझेदारी पिपी पी ढाँचा ज्या या फैगु सहकार्य विशेष अध्यनीयता इनाफेना दिल कर्णाली प्रदेश मुख्यमन्त्री यामलाल कडेल नापा नेपाली कङ्ग्रेस या सरकार बोती कापी पेमा मन्त्री बिहादिगु राजीनामा स्वीकृति याना दिगुदु हुए कल राजीनामा बी धुङ्कानी खाली जुया चङ्गु मन्त्रालय मुख्यमन्त्री कडेल थगु माता हते तया दिगुदु नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले कङ्ग्रेस नेतृत्व सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकारसँग समर्थन लित कागुदु धनगढी मिग चङ्गु एमाले प्रदेश संसदीय दलीय बैठक सरकार यता बिहागु समर्थन लित कागु कोचिनागु संसदीय दलीय नेता राजेन्द्र सिंह रावल जानकारी बिया दिल उपराष्ट्रपति रामसाय प्रसाद यादव कतारे अमीर शेख तमिम बिन हमद अल थानी नापा दोहा शिष्टाचार नाप्लाना दिगुदु उपराष्ट्रपति कार्यालय कथन कतार भ्रमणे वेकल दोहा दुगु लुसाइल दरबारे वेकपिन दथि नाप्ला ज्या जुगु ख उपराष्ट्रपति यादव कतारे पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलिफा अल थानी मुदुगु लिता कया नेपाल सरकार व नेपामी जनता यथास विचा ह्याकेता समवेदना पोङ्केता कतार झाया दिगु ख नाप्ला गुजोले वेकल अमीर शेख तमिम साही छेन्च व कतारी जनता यता आपलन दुःख पोङ्का दिसेन दुःख याथो इले शक्ति चुला माधका मनन्तुना देशना दिगुदु नेपालो भारतीय ऊर्जा सचिव स्तरीय मङ्का निर्देशक समिति बैठकमा नेपालसँग अथे झिङखुस त्या मेगावाट बराबर या मता निर्यातियाको विशेष सहमति चुलाक गुदु आ सञ्चालन दया चोङ्गु ढल्केबर मुजफ्फर व ढल्केबर सीतामढी अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनसँग झिम्पेस मेगावाट मता आयातियाको सहमति जुगुदु छ अथ्याना निर्यात पाके छिन्छ मेगावाट झिङखुस त्या मेगावाट बराबर ठेङ्केको सहमति जुगु ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय सहसचिव सन्दीप कुमार देवी जानकारी बिया दिल देव जानकारी बिया दिल प्रतिनिधि सभा हिगा बैठक अर्थ नपाया छु नेपाल कानुन यता संशोधन व खारेज आगु विधेयक 2083 सर्वसम्मति पारित आगुदु बैठकै अर्थमन्त्री डाक्टर स्वर्णी मुवागले अर्थ नपाया छु नेपाल कानुन यता संशोधन व खारेज आगु विधेयक 2083 दति विचार या मधका नियवय दिगु प्रस्ताव स्वीकृत जुगु ख सरकार विपन्न वर्ग यता लक्षित याना ह्याकगु ढेबा मयाक ह्याका तगु स्वास्थ्य पोर्टल पाखे वास सेवा क्या फैगु लिया निदो पुगुदु स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय कथम पोट्रोगले द्वितीयपी अस्पताल तेगु लिया अपयावना चङ्गु ख यलया धोबी घाटे ज्या सिधगु अत्याधुनिक ढल प्रशोधन केन्द्र परीक्षण ह्यागुदु आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय पिआइडी या कथम असार 30 गते निसे परीक्षण सञ्चालन वोगु केन्द्र नित सोङ्गु करोड हेनिगु लाख लिटर ढल प्रशोधन यागु क्षमता कुबिगुदु पिआइडी या प्रमुख नापा इन्जिनियर रामकुमार श्रेष्ठ या कथा सिजिसिओसी अटल जेबी देकगु थो केन्द्र ये सोनि गया ढल व्यवस्थापन महत्व जाइगु योगदान थ्याङ्कीगु आशा कुबिगुदु बागलुङ या जैमिनी नगरपालिका सुकुम्बासी छेचा याता छेव बु लालपुर्जा लहाट धुङ्कानी सुकुम्बासी हाठ्यान हङ्गुदु नगरपालिका मसिका दुपिन झिन्च्यामा सुकुम्बासी छेचा याता बु न्याना छे देका लालपुर्जा लल हागु ख जिल्ला समन्वय समिति कास्की बर्खाया इले जिल्ला निङ्क दुगु खुसी तेके
खुसिया जोल कयागुली दिका तगु जु साना चानेस्या इले खुसी छ अवैध कथ फी कया ल्या चोङ्गु सी दुगु धागुदु थोए खया त कया पोखरामा नगरपालिका निगु सेती गण्डकी खुसी छ अवैध कथ फी ल्या चोङ्गु इले प्रहरी सोङ्गु टिपरिया त नियन्त्रण कागुदु पोखरा महानगरपालिका कफी

सुन्तला, सयपत्री, स्वाया व्यावसायिक बुझाइ यापी किसान तेता कृषि जोलौ व पुसाइ नासुङ्गुदु स्थानीय उत्पादन उपकेगु व किसान या आय आर्जन वृद्धि यागु आज सञ्चालन यागु कफी सुन्तला व सयपत्री बुज्या प्रबन्धन ज्याजो कथ मिग किसान तेता थो ग्वाली ललहागु ख सही दशरथन स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय उपकुलपति व रजिस्ट्रार नियुक्त जुगुदु शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय मिग जुगु विश्वविद्यालय सभा बैठक प्राध्यापक डाक्टर सुनिल कुमार जोशी या उपकुलपति व डाक्टर भीमबहादुर चन्द्याता रजिस्ट्रार नियुक्त यागु ख मध्येश प्रदेश सभा प्रदेश सरकार दुत बिगु वैगु आर्थिक द 2083-84 बजेट सर्वसम्मति मिग पारित यागुदु बैठक सभामुख बजेट पारित यागु नीति प्रस्ताव दुत बि धुङ्का वैगु आर्थिक द 2083-84 बजेट सर्वसम्मति पारित जुगु ख सरकार ये सनिग ले देन द निसे सडक एक खम्बा अव्यवस्थित व प्रयोगविहीन इन्टरनेट टेलिफोन व टेलिभिजन या तार व्यवस्थापन यायता सपुदुगु निकायता उज बिगुदु सूचना तथा संचार मन्त्री डाक्टर विक्रम तिमल सिन्हा व ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठ बोतिसम हिग ऊर्जा मन्त्रालय चङ्गु उच्चस्तरीय अन्तरनिकाय बैठक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण नेपाल विद्युत प्राधिकरण नेपाल टेलिकम एनसेल इन्टरनेट सेवा प्रदायक तेगु छाता संस्था आई स्पान यातायात एकीकृत कार्य योजना देखा साउन या न्युवा दुने नपाङ्गु खुसी सोनी गया खुगु थासे छेलाबुला मुजुगु तार चिकेता उज बिगु ख देशम्पिनिया बुख अमेरिकी सेना होर्मो जलमार्ग जुस्या इरान पाके उना चङ्गु छगु चिकन ट्याङ्कर याता हेल फायर छेप्यास र प्रहार याना निष्क्रिय याना बिगुदु अमेरिकी सेना या कथ इरान दथि अझ उप हवाई आक्रमण यागुदु इरानी सञ्चार माध्यम तेसा केसमा टापु बन्दर अब्बास हो चाबहार लागा विस्फोटन यागुदु थोए दथि इरान लिस कथ कारवाही त कथ खाडी लागा थिथि थासे आक्रमण याना चङ्गुदु बहराइने सायरन थागु दुसा कुवेत या कुवेत थगु थासे लक्षित यागु छु छेपास्त्र व ड्रोन त्यता अवरोध याना कोफागुदु आकाशया जानकारी इङ्ल्यान्ड या त बुकुसे अर्जेन्टिना फिफा विश्वकप 2026 या फाइनल दुहा मङ्गुदु अमेरिका या एटलान्टा स्टेडियम जुगु कासा अर्जेन्टिना इङ्ल्यान्ड या त 2-1 गोल बुकुसे फाइनल लम्पु कोचीको खसा अर्जेन्टिना मड्डिकनी कगु खुसी विश्वकप फाइनल ठेङ्गु ख थोयान हापाङ्गु संस्करणे अर्जेन्टिना फ्रान्स या त बुकुसे विश्वकप उपाधि ललहाक ट्याकुगु खसा कासाया नापा लागु इङ्ल्यान्ड थो कासा थगु लाते कागु ख कासा ङेङ्यागु मिनेटे एन्थोनी गोर्डन गोल यासे इङ्ल्यान्ड या त ङ्यङ्कगु खसा चेङ्यागु मिनेटे अर्जेन्टिना एन्जो फर्नान्डेज गोल यासे कासा बराबरी के हगु ख अतिरिक्त इया निकगु मिनेटे लाउटारो मार्टिनेज गोल यासे अर्जेन्टिना या त 2-1 या ट्याकुसा बिगु खसा थोनापा अर्जेन्टिना विश्वकप फाइनलले थ्या पक्का या त तालागु ख मौसम या जानकारी थौ हिमाली लागाया छुन थासे मल नापान हाप्सा तोया भतिजा वा वैगु चपु कुहा वैगु सम्भावना दु पहाडी लागाया छुन थासे मल नापा वा वैगु सम्भावना कुबिगु दुसा कोशी बागमती गण्डकी लुम्बिनी प्रदेश तराई या छुन थासे व मधेस प्रदेश सुदूरपश्चिम प्रदेश तराई लागाया मोह थासे मल नापान हाप्सा तोया मध्यम टकया वा वैगु सम्भावना दु कोशी बागमती प्रदेश हिमाली लागाया छु थासे व कोशी बागमती गण्डकी लुम्बिनी व कर्णाली प्रदेश या पहाडी लागाया व लुम्बिनी प्रदेश तराई या छगुनिगु थासे आपलङ वा वैगु सम्भावना कुबिगु जल तथा मौसम विज्ञान या थापु दु वङ्गु नि पे गौसा ये सोनिकया क्वाज निगुगु डिग्री सेल्सियस जति लुगु खसा थौनी ने ये सोनिकया क्वाज नि हेगु निसे निगुगु डिग्री सेल्सियस जति चोनी थौ ये सोनिकया थौ ये सोनिकले सुथसिया न्याता इजुया झिन्छगु मिनेटे लुगु सूर्य शनि ल नेता इजुया नेगु मिनेटे बि रेडियो नेपाल नेपाल भाषा समाचार पुन चिता अहिले नेपाली भाषा समाचार निनादिस शुभ

समधि करे भोजन समधिन गाली सुनावे सखी सब मिली जुली हंसी उड़ावे समधि करे भोजन समधिन गाली।

लसे शर्वी के छोतांग रिक्षुंग दिवा यर्गे तोंगुप्लातांग सुंग्युप कितुबला रेडियो नेपाल ने तोंगे नुवाओ शर्वी के की लारिम शर्वी डोलु की लारिम सेंदुला चुन वतु शर्वा अचुनुप एजुनुम तंग छंगा चली तेरीला गमचोकला ना लारिम जिनक्योंगमा ग्रीष्मा शेर्पा छोकने टसिदेले थेंगे तिवा तेरीला लो सम्बा गेतोंग गेचुग्या सुमकी तिंग छम्ती टसिदेले सफियन नरिकी चफुरी छेर्मुदोकेरङ आरिङसङ शिवी डोलुकी ल्यारिम तुङ्गुप्ला ङ ल्यारिम जिन्क्योङ माताङ लक्ष्य बादल झा द्या स्टुडियोला लेम्गा दि ल्यारिम लेङ्गे तिवी सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपालकी एफएम ब्यान्ड तिवा 98.1 से 103 मेगा हर्स्तेमा सेनाङ थुप्की सिसी रेडियो नेपालकी फेसबुक पेज रेडियो नेपालकी वेबसाइट www.radionepal.gov.np देजिन रेडियो नेपालकी अनलाइन पोर्टल www.radionepalonline.com तंग दिलारिम की फेसबुक पेज शेरवी के शेरवाती वी गोशी सिरूप पेज तेमा संग चम्बुलिंग की चुकुई दासला जुन वसिनांग रेडियो नेपाल ने तोंगे नवाव शेरवी डोलो के लारिम सेनांग थुपके दि ल्यारिमला शर्वी चिछोक नङ्ला जुने छक्लेने फेन्छेन पो नङ्गोफको छप्तिवा चिछोक नङ्ला सब्जु बुलुप्तिवा शर्वी चिछोक नङ्गी छप्सित गोठितिवा लामा खेनपतिवा शर्वी सर्गत पातिवा तङ सखुल नाछोक्ला छक्लेन फेन्छेन पो नङ्गिन जुन कोतोप शेर्वा आचुनु पेजिनुम तिवाला फेप्सुने आरबुरु किरुप्तङ कोर्ना छोकी कोला लेन खाक्सेन पोतिवा ख्याफेलकी हन्क्वा सुङकी छोक्पा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानकी थेङताङबोला शर्वी चिछोकी शर्वी केला जोमलुङमा सिरो पत्रिका ख्याफेल याङना विमोचन क्यानगुवा लसी आरिङकी दि ल्यारिमला यम्बु शर्वी चिछोकी छोक्पा याङना नेपाल शेर्पा सङ्घकी चिकडिल्लातङ नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानकी रोक्रमला ख्याफेल क्याउ जोमलुङमा पत्रिका कोर्लातङ दि पत्रिका नङ्ला चिनी वतो मितवी लेख कविता तिवे लोपुसिनी टरी क्यानगुवा तङ दि पत्रिका नङ्ला टिनी वतो मितिवी लेख कविता तिवी कोला ख्यान्तोक तेरो टरी क्यान वा लसी त गोमसोक्ला अचुल हक्वा तेन्जी शेर्पाकी लानगुप लु खुम्बुला तेङबोजे गुम्बला लेप्सुला सिरुप लुचिक जको टरी क्यान वा लसे सेनोनाङ

plus tongbar medok sirupti dakpe gyalkhap ki gyalyongu mendok sangyin titap ki dakpu mimang tibi ngoshi tang kyansang di tongbar medok thinigi titap ki dakpe tongbar mendok ki dongbu tiwa dongbu sing dongbu tiwa dakpe khangthep che teku sang mengi sila siji dedi dakpe ngoshi sangyin dup tapki lasi ta arinki di larimla lhenge tiwala jomalongma patrika khangyin tang di patrika nangla sisi ki khangkang kola lekh kabita lu shabru tiwa tini wa sirup kola korna sokla khyantok terup tari kyan gotup tapki ta di larimi tinshok seksenu nang sine lhenge tiwa terila shopyen नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानकी ख्याफेले क्याउ दि शेर्वी पत्रिका शेर्वी चिथोकी के सुङ्क्योप कितुब्ला छसे फेन्सेन पो ल्यागेन चिन ग्वाय शेर्वी के नङ्ला रङ पे कविता शेर्वी लोग्यु लुक्सो तिवा कोर्ना छोक लेख्तिवा ख्याफेले क्यासिङ शेर्वी के लोपुला तिरङ मिन्दे टिकु लाकासङ ग्याछा डोथोकी दिकी जोसालिन्सी जोन्दा जोर्मा तिवाला सङ रङ्गी ङोसी कोला ख्यान्थो खुङ्गुप्तङ दिला छेतोङकी शिला हानी खाङबी नङ्ला पङ्ला लोप्टला रङ्गी के थकोकी सिरुपकोला सेमसुक फर्जी तोब्ला ल्यागेन्ची तुग्राङ क्याने तोरी गलोफ वरङ शेर्वी के तिवा सुङ्क्योप कि तोब्ला सङ दि पत्रिका कि ससे रोग्रम खक सेन्पो कि थोपकी दिपकी पत्रिका दिपला थेङ ताङबोला प्रतिष्ठानकी तेन्दोभियन था याङलुङ थेङ निकी पत्रिका सङ तेन्दोप चरी क्यान गए दि पत्रिका नाङला सिसिकी खाङखाङ लेख्तिवा टिनी वा सिरुपकोला था लेङ्गेतिवला ख्यान्थोक तेरुप सिंह वा दि जोमोलुङमा पत्रिका नङ्ला खेन्पो गवाङ गोसेर शेर्पाकी लोसम्बा लोसार कुर्ला टिनाङ्वाय शेर्वी लोसम्बी तुछेन लोसार तुछेन चुक्यानी सि चुक्यानी चिगोगी सिरुपकोला खेन्पो गवाङ गोसेर कि लेख

0: लसो फ्याफुल्ला तिनी मञ्जुश्री सम्म 2862 तालु गोनेलाला छेपाङी विक्रमसम्म 2083 साल असारलाला सोमचुई सेङी नारे बिहिबार छु रेडियो नेपाल हिन्न तामाङ साङ्गुरी रङ्ग डेनमुला ङा सूर्य मोक्तान काइब्लुन बालेन्द्र साहसे जामेकोला उद्यमी कदेला उद्यमशीलता विकास लबारी सरकार से खाम्दे दोनाला बाङ्ला सेलामुला बेसी संक्षेप मुला काइब्लुन थेन ब्लोन सेङजाङला गे दिम्री तिनी जामेकोला उद्यमी महासङ्घ नेपाललाई दान पोका दिथेन रूपता से लेङ्गुला सुबान काइब्लोन साहसे जामेकोला उद्यमीलाई समस्या दछाङ लबारी सरकार से बाङ्लाबन खबासे जामेकोलाका देशी उत्पादन लबन खबासे गदेदा पर्यटकीय ग्लागादेरी थान्से चुङबारी खाम्बा वातावरण सोचेल मुला बेसी सुङ्सी बहिन्ना काठोरी महासङ्घला मुल्मिका देशे छुङलाबारी खाम्बा वातावरण चोबारी जामेकोलाका देशी शोभा से गदेला मुख्युल्ला बजारी दोनालाबारी खाम्बा विशेष गेखोर सेङबारी थिएन छोङमेला प्रदर्शनी बिजनेस टु बिजनेस म्याचिङ थिएन फिर्का भ्युल्ली दोनालाबारी खाम्बा खोर्गादेरी अनिवार्य बोकिन मारी काइब्लन साहसे मोइजेनला छुपमला महासंघसे शोभा म उद्यमी ट्रेडमार्क दा स्थापित लबारी खाम्बा मोइजेन्दा काइब्लन साहसे चु ट्रेडमार्क दा युनान बजारी बाबारी बाङ्ला सेलमला बिसिनन सुङ्क्षेपमला चुनन घुङ्री उद्योग वाणिज्य थेन आपूर्ति ब्लोन गौरी कुमारी यादवसे अमेरिकी बजारी नेपाली उत्पादन द ग्लापिन बारी मोइजेन्दा छुपमला अमेरिकी ग्लेबोन खाङला गेतेन बा ग्लेबोन स्कर्ट अर्बम थेन लिङ्गमला छुमान ब्लोन यादव सन् 2015 रीतिमा नेपाल ट्रेड प्रिफरेन्स गेखोरला दुई सन् 2025 डिसेम्बर रिथुम सिजनमा चाहिँ नेपाली उत्पादन द डिपेन ग्लापिन मारी मोइजेन्दा सुबहिन्न ब्लोन यादव से गोर्नी हुल्ला गुङ्री छोङथेन लगानी लबा ढाँचा सम्झौता संयन्त्र नाङ्याम काठुइलासी गोर्नी हुल्पक्षीय छोङथेन लगानी लेनासी पिनमा रिनुन मोइजेन्दा सुबमला काइडोन बालेन्द्र साहदा नेपाल राष्ट्रवैक्ल गभर्नर डाक्टर विश्वनाथ पौडेल सी रूप्ता सिलिङमला शुभमला काइब्लोन थेन ब्लोन सेङजाङला गेदिम्री रूप्तामा हिल्ला सेयर बजार बैङ्किङ थेन वित्तीय थुम थेन सम्बन्धित ताम्री काठुई लाबमुबा विषय काइब्लोन साहला कागुर थेन अनुसन्धान खेनपो दिपा दाहालसे सुङ्छु बहिन्ना चरणलासी स्यार्थेन क्लाङमा ब्लोन सस्मित पोखरेल थेन नेपाल दा जापानला ग्लेबन माया दा तोरुसे रूप्ता सिलिङमला शुभमला ब्लोन थेन ग्लेबन रूप्तामा नेपाल थेन जापानला गोर्ङी हिल्पक्षीय ब्रेलबा गोर्ङी हुल्डिक्सी गेलाबारी खाम्बा लामन ताम्री काठुइला बमुला ब्लोन पोखरेल से नेपाल थेन जापानला दोङ्रा पुइबा ब्रेलबा गिक्से अर्कुला विश्वास लबन खाबा गे गादे खाबरेरी अझ कोङमा सोबारी बाङ्ला सेलमला बिसिनन सुङ्छु बमुला जापानी ग्लेबुन तोरुसे सार्वजनिक लोपखाङला ब्रिब डोबादा ज्याबा सोबारी नेपाल सरकार से लबन खाबा बाङ्दा जापान सरकार से रोला सेलमला बिसै सुङ्छु बमुला सम्पत्ति छानबिन आयोग से सम्पत्ति विवरण रूपारी थिएन छानबिन लबा सम्बन्धी बेरान गे दान दिँदा आलसेला थापमला आयोग से तिनी गुर्गीको सूचना छिसे ग्रेन टिम खाङ से तिलमा पिनमा आदेश अनुसार रिट निवेदनलाई खाप्पै बिमा लिच्छला टुङ्गो आता देदोना दान्दे खाजी बेनन गे लसेला आरे विषय पाङ्पा हिन्न आयोग से ङाछला ठिम्पोन छेन्पो संवैधानिक आयोगलाई दान पोका दिथेन नेपाली सेनालाई ङाछला दान पोका देवीमा स्यान सार्वजनिक दान डिटिसी जिम्मेवारी पुइबा ग्लेठिम दान पो थिएन कर्मचारीका देला सम्पत्ति विवरण रूपन खापमा आयोग से सम्पत्ति विवरण पिन्दोबा म्याद तिनी दोना तोकला पम्बा ग्रेन नाम ताइबल इच्छा खाबा भालसे कोसी ब्यारेज प्लिङमा मुला सुनसरीला प्रहरी नायब उपरीक्षक चन्द्रबहादुर खड्कासे स्यार नेपाली नाम ताइबाला ताइबन लाबालिचा गान्धीरी अझै नुन ग्रेन भाल खाबारी खाम्बा माङमा मुला विषय सुङबा मुला कोसी ब्यारेजरी मुबा गोर गाँचुइसे ढु म्याप्का देरी दान्दे गोर निचुइसे गिक म्याप ठङ्से जिम्बा मुला क्युइला सतह लाख गिक्से तोङ गाँचुइ क्युइसेक बिमा लामा ताबालिचा जोखिम ताबारी खाम्बा सङ्केत पिनबारी कोसी ब्यारेज से वाला नाङ थेन वाला झन्डा खुनबान खाप मुला बेसे कोसी ब्यारेज नियन्त्रण कक्ष से पाङबा मुला बार्खा तीमा हेन्से सप्तकोशी गान्धी से लामन ग्रेन क्षति धानलाबारी खाम्बा से नेपाल छ्याम्री भारत से नुन सप्तकोशी खाप भालदा ध्यान पिनमान खाप मुला देङनुन दाङसे असार साउन थेन भदौलारी स्यार पहाड थेन तराई थुम्री लामन ग्रेन नाम ताइमा ग्रेन ग्रेन भाल सप्तकोशी छोल खाप मुला सप्तकोशी भाल खामा गान्धी ख्यारखुरला ग्लागदे ब्लुम्बा थेन ब्यङ्गनलाबारी खाम्बा जोखिम लामन बागमती प्रदेश सरकार से प्रदेशलाई ग्रेनपोर्ट टिकाप्रसाद देवकोटा से प्रदेश सभा से पारित लाबा नोर सम्बन्धी गोरिङी विधेयक प्रमाणीकरण लासुबोला प्रदेश सभा से पारित लाबा नोर्दिङ 2083-84 ता प्रदेश संचित कोषला टाङ्गा फेबा थेन खर्चलाबारी बाबा विनियोजन विधेयक 2083 थेन प्रदेश सरकारला नोर सम्बन्धी प्रस्ताव कार्यान्वयन लाबारी सुभा नोर विधेयक 2083 प्रदेश ग्रेनपोर्ट देवकोटा से प्रमाणीकरण लासुबहिन्ना प्रदेश ग्रेनपोर्ट गेदिमला शाखा अधिकृत डाक्टर अर्जुन आचार्य अनुसार गोर्गिनोन विधेयक नेपाललाई हिल्टिम्नु अनुसार प्रमाणीकरण लासुबहिन्न बागमती प्रदेश सभालाई चुनन असार घिचुई कुनुटी बची साङसे गोर्गिनोन विधेयक पारित लासी प्रमाणीकरण लापारी सिफारिस लाबहिन्न सुङबुन लदान लाखु गाछेन्से खाली मुबासे रो सुङबुन अप्सरा चापागाइसे विधेयक प्रमाणीकरण लाबारी प्रदेश ग्रेनपोदा पुइप मुबा बागमती प्रदेश सरकार चाहिँ बागमती प्रदेशलाई साङ्गिर बनगा दिँदा प्रदेश सेङ्गमानखाबा अस्पताल निर्माणमा सहुलियत रोपिन्छला तापमला बागमती प्रदेश लुइब्लोन खाङ रीतिनी गोर्खेको विशेषज्ञ खोर्साङसी प्रदेश लुइब्लोन किरण थापा मगर चाहिँ ब्लोन स्तरीय निर्णय अनुसार नेपाल पत्रकार महासङ्घ बागमती प्रदेशलाई सिफारिस रे साङ्गिर बनगा देश मान्लामा गाँची प्रतिशत सहुलियत याङसेलामला विषय सुङसु भहिन्न बागमती प्रदेश अस्पताल चाहिँ आइसियु प्रयोगशाला एक्सरे सिटी स्क्यान एमआरआई भिडियो एक्सरे सेवारी याचुई प्रतिशत छुट पिन्छेला तापहिन्न निवा लासुम नाङरी यातायात व्यवस्था गेदिम भक्तपुर से तोङकुचुई सवारी चालक अनुमति पत्र लाइसेन्स भोला बमला छार लाइसेन्स भोलामा हिल्ला कोसरी करोड चुइसेको लाख ब्रेचुइसे घि टाङ्गा जम्मा तापमला लासोमरी लाख घिसे तोङसोमची भ्रे लाइसेन्स छिबारी दान्देदोनामा तोङकुचुई सेवा ग्राही द छार लाइसेन्स भोला से जिम्मा बमला बेसे गेदिमला ग्रेनपो प्रवीण श्रेष्ठ से सुनबा खिन्न दान्दे रे दाङसे तोङगिखेन्से तोङगिक्से ग्याजा भ्रे सेवा ग्राहिदा लाइसेन्स पिन मन खापमला विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से उच्च शिक्षा उपाधि समकक्षता तोकला छेला तापमला त्रिभुवन विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम विकास केन्द्र से समकक्षता तोकलाबान खबरी 2083 साल साउन लाला गिक कुनु अर्थात नाङ्गर हेन्से आयोग से लासेला तापहिन्न त्रिभुवन विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम विकास केन्द्र से तिनी गोर्खीको सूचना छिसे तिलाई नेपाल थिम संशोधन लाबा थिम 2082 ला दफा निचिसे ब्रे अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग थिम 2050 ला दफा ढु संशोधन लापसै नाङ्गरेन्से आयोग से तोकला छेला तापहिन्न ओसेम सिद्धार्थ राजमार्गरी माइक्रोबस दुर्घटना तामा मेन्दुगिक मिसी बम्बला विषाम मेन्दुङ्गेस घाइते तापमला भैरहबा घ्याम बुटवली निबल्लाबा माइक्रोबस दुर्घटना तामा माइक्रो बसला खलासी बुटवल उपमहानगरपालिका सोमला सोमचुई दिङला सन्दीप बराल शिवम्बला विषय डिआइजी कृष्ण कुमार चन्द से सुन्दैन सुरानुलासी स्याङ्जा जुङला गोल्याङ ढु पिडी सोङ बेबा ग्लारी गोठे फुपमा मेन्दुगिक मि शिवम्बला मुइथेन ढुवादा चापासे पिनमान लामा तिनी छोरी तिरेमान गोठे फुपमा पाती खर्क बनपाले बिबा ग्लाला ढुची से घाँदिङला धनबहादुर रेश्मी शिवम्बला विषय थेर्ला ओडा चोहो दिप छिरिङ गुरुङ से सुङबा हिन्न चुनन साङ्गुर गदेला छ्याम्री तिनी त तामाङ साङ्गुर जिन्जी रेडियो नेपाल ज्ञानमा लसुगु लसो फ्याफुल्ला
1: सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल
2: राष्ट्रिय रेडियो राष्ट्रको संचार
3: जहाँ मेहनत र परिश्रम छ त्यहाँ सफलता र सम्मान पनि छ भनिन्छ काम गरे दाम मिल्छ अनि सम्मान यो हो पौरखीको कथा
4: रेडियो नेपालबाट हरेक बिहिबार बेलुकी 9 बजेको समाचार पछि र शुक्रबार दिउँसो 3:25 पुनः प्रसारण हुनेछ सुन्न नभुल्नुहोला कार्यक्रम पौरखीको कथा
5: अहिले तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल यो बागमती प्रादेशिक प्रसारण हो अब हामी सुनाउँदैछौँ विभिन्न लोक तथा दोहोरी गीतहरू पहिलो लोक दोहोरी गीत पशुपति शर्मा र देवी घरती मगरको स्वरमा पशुपति शर्माको लय सङ्कलनमा

ई रेडियो नेपाल ठीक अरविन्द्र मिश्रसँग मैथिलीमा समाचार सुनल जा। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग नेपालक लेल फ्रान्सक राजदूत भर्जिनी कोर्टाभाल आई राष्ट्रपति भवनमे शिष्टाचार विदाई भेट कयलनि अछि। ओहि अवसर पर नेपाल आ फ्रान्स बीचक द्विपक्षीय सम्बन्ध, आपसी हित तथा अभिरुचिक विषयमे बातचीत भेल छल। राष्ट्रपति पौडेल अपन कार्यकाल सफलतापूर्वक सम्पन्न कयल गेला पर राजदूत कोर्टाभालके बधाई दैत अगिला दिनक लेल शुभकामना व्यक्त कयल गेल राष्ट्रपति कार्यालय जनौलक अछि। नेपाल सरकार मंत्री परिषदक आइ बैसल बैठक अनुचित लेनदेन मीटर ब्याजसँ प्रभावित नागरिकक मांग सम्बोधन करबाक लेल वार्ता टोली गठन करबाक सहितक विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णय सब कयलक अछि। शिक्षा तथा खेलकूद मंत्री एवं सरकारक प्रवक्ता सस्मित पोखरेलक अनुसार बैठक आइ 7 महत्वपूर्ण निर्णय कयलक अछि। अनुचित लेनदेन मीटर ब्याजसँ प्रभावित नागरिक सभक मांग सम्बोधन करबाक सम्बन्धमे वार्ता करबाक लेल सरकार वार्ता टोली गठन कयलक अछि। प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषदक कार्यालयक सचिव पुष्कर सापकोटाक संयोजकतमे ई गठित टोलीमे अर्थ मंत्रालय, गृह मंत्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी आ संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मंत्रालयक सह सचिव सब सदस्य रहल छथि। सरकार 1 आ 2 दरक नया डिजाइनक सिक्का टकमरी करबाक लेल नेपाल राष्ट्र बैंक के स्वीकृति प्रदान करबाक निर्णय कयलक अछि। नेपाल कानून सूचना पायलट प्रणाली स्थापनाक लेल कोरिया सरकार सँ प्राप्त होबय वाला 1.81 मिलियन अमेरिकी डॉलर बराबर के अनुदान सहायता स्वीकार करबाक निर्णय बैठक कयलक अछि। मंत्री परिषद सँ संरक्षित क्षेत्र भीतर के राष्ट्रीय वन क्षेत्र में रहल गाछ तथा फूल हटेबाक लेल पूर्व स्वीकृति लऽ चुकल क्षेत्र भीतर थप गाछ पोल हटाओल जेबाक भेला पर प्रचलित कानून प्रक्रिया पूरा कऽ मंत्रालय स्वयं स्वीकृति दऽ सकबाक निर्णय भेल अछि। बैठक विभिन्न मंत्रालय सभक संगठन संरचना आ दरबंदी स्वीकृत कयलक अछि। मंत्रिपरिषद नीति अनुसंधान प्रतिष्ठान विकास समिति गठन पहिल संशोधन आदेश 2083 स्वीकृत करबाक संगे सेवा करार में कार्यरत कर्मचारीक व्यवस्थापन संबंधी व्यवस्था के सेहो स्वीकृत कयलक अछि। प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह महिला उद्यमी सभक उद्यमशीलता विकासक लेल हर संभव सहयोग करबाक लेल सरकार प्रतिबद्ध रहल बतौलनि अछि। प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषदक कार्यालयमे आइ महिला उद्यमी महासंघ नेपालक पदाधिकारी संग भेल छलफलमे ओ लोकनि महिला उद्यमीक लेल सरकार सक्रिय रहल तथा ओकर सभक उत्पादन कयल वस्तु सभक पर्यटकीय स्थल सभमे प्रवर्धन करबाक लेल वातावरण निर्माण कयल जेबाक बात बतौलनि। छलफलमे महासंघक प्रतिनिधि व्यवसाय मंत्री वातावरण सुनिश्चित करबाक लेल वस्तु तथा सेवा के राष्ट्र तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहुंचेबाक लेल विशेष कार्यक्रम संचालन करबाक तथा व्यापार मेला प्रदर्शनी बिजनेस टू बिजनेस मैचिंग आ निर्यात प्रवर्धनक कार्यक्रम में अनिवार्य सहभागिता हेबाक लेल आग्रह कयलनि। महासंघ विकास कयल हम उद्यमी ट्रेडमार्क के स्थापित करबाक लेल भेल आग्रह प्रति प्रधानमंत्री शाह सकारात्मक जवाब दैत ई ट्रेडमार्क के शीघ्र बाजार में अनबाक सुझाव देलनि। छलफल के क्रम में महासंघक वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय महिला उद्यमी व्यापार मेला में सरकारक संस्थागत सहकारक मांग सेहो कयल गेल छल। महिला उद्यमी सब वित्तीय सहूलियत वास्तविक उद्योगी धरि पहुँच नहि सकल शिकायत हो ई सुविधा गाम गाम धरि विस्तार करबाक लेल आ पहुँच बढ़ेबाक लेल तथा पूंजी अभावक कारण उद्यम रोक नहि देबाक लेल आ धितों के वैकल्पिक व्यवस्था करबाक लेल सेहो सरकार सँ मांग कयलनि। महिला उद्यमी सभक छाता संस्था महासंघ के सरकारक नीति निर्माण तथा निर्णय प्रक्रिया में सहभागी कराओल जेबाक मांग करैत ओ लोकनि स्थानीय तह में सीपमूलक तालीम संचालन के लेल महासंघ दक्ष स्रोत व्यक्ति उपलब्ध करेबाक प्रतिबद्धता व्यक्त कयलनि। प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह सँ नेपाल राष्ट्र बैंकक गवर्नर डॉक्टर विश्वनाथ पौडेल आइ भेंट कयलनि अछि। प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषदक कार्यालयमे भेल ओहि भेंटमे हुनका लोकनिक बीच देशक शेयर बाजार, बैंकिंग तथा वित्तीय क्षेत्र सँ सम्बन्धित विषयमे छलफल भेल। प्रधानमंत्री शाहक प्रेस तथा अनुसंधान विज्ञ दीपा दहाल जानकारी देलनि। परराष्ट्र मंत्री शिशिर खनाल सँ भारतक विदेश मंत्रालयक अतिरिक्त सचिव मुनु महावर आइ हुनक कार्यकक्षमे शिष्टाचार भेंट कयलनि। ओहि अवसर पर हुनका लोकनिक बीच नेपाल भारत बीच पारस्परिक हितक विविध क्षेत्रमे रहल निकट तथा दीर्घकालीन सम्बन्धके आओर सुदृढ़ बनबाक विषयमे छलफल भेल परराष्ट्र मंत्रालय जनौलक अछि। एहि तरहें परराष्ट्र सचिव
अमृत बहादुर रायसँग सेहो आइ भेट कयलनि। भेटमे नेपाल भारत बीच जारी द्विपक्षीय सहयोगक प्रगति सम्बन्धमे समीक्षा करैत प्राथमिकताक क्षेत्र सभमे साझा कार्य सूचीके आगू बढ़ेबाक विषयमे विचार विमर्श भेल छल। नेपाल भारत बीचक दीर्घकालीन मित्रता आ बहुआयामिक साझेदारी प्रति पुनः प्रतिबद्धता व्यक्त करैत संस्थागत सहकार के और सुदृढ़ बनबाक तथा उच्च स्तरीय संपर्क आ संवादक निरंतरता के कायम रखबाक उपाय संबंध में सेहो छल। फल भेल मंत्रालय जनौलक अछि। शिक्षा तथा खेलकूद मंत्री सस्मित पोखरेल देशक शैक्षिक प्रणाली सुधारक लेल सरकार दीर्घकालीन योजनाक संग ठोस डेग उठाओल बतौलनि अछि। चितवनक भरतपुर विमानस्थल में आई संचारकर्मी सँ बातचीत करैत मंत्री पोखरेल सरकार व्यवस्थित आ वैज्ञानिक तवर सँ शिक्षा क्षेत्रक रूपांतरण करय लागल उल्लेख कयलनि। सामुदायिक विद्यालय के गुणस्तर संबंध में पूछल गेल प्रश्न में मंत्री पोखरेल कहलनि जे हम सब समग्र रूप में पाठ्यक्रम के पूर्ण रूप में पुनः संरचना करबाक लेल कार्यदल गठन के आगू काज बढ़ा चुकल छी। ओ कहलनि मंत्री पोखरेल शिक्षा संबंधी विधेयक अगला पुस्ता आ प्रविधि के ध्यान में राखि कऽ अनबाक स्पष्ट कयलनि। ओ कहलनि जे अखन टेक्नोलॉजी AI सेहो सब विषय के समेटबाक यथाशीघ्र विधेयक आनल जायत। निजी क्षेत्र के व्यवसाय करबाक वातावरण के लेल सरकार सदा सकारात्मक रहल बतौबैत ओ शैक्षिक परामर्श सहित क्षेत्र में आबि सकय वाला समस्या के समय में नियमन करबाक लेल किछु प्रयास कयल प्रश्न कयलनि। मंत्री पोखरेल विदेश अध्ययन करय गेनिहार विद्यार्थी ओहिना रहबाक समस्या अंत करबाक लेल कंसल्टेंसी सेहो उचित परामर्श आ मार्गदर्शन कऽ सकबाक चर्चा करैत मंत्री पोखरेल शैक्षिक क्षेत्र के थप व्यवस्थित बनेबाक लेल सरकार प्रतिबद्ध रहल बतौलनि। संपत्ति छानबीन आयोग संपत्ति विवरण संकलन आ छानबीन संबंधी संपूर्ण कार्य स्थगन कयलक अछि। आयोग आई एक सूचना जारी करैत सर्वोच्च अदालत सँ एहि अखार 31 गते के आदेश अनुसार रिट निवेदन के अंतिम निष्कर्ष नहि लगबा धरि छानबीन स्थगन कयल जनौलक अछि। आयोग पूर्व न्यायाधीश संवैधानिक आयोग पूर्व पदाधिकारी आ नेपाली सेनाक पूर्व पदाधिकारी अतिरिक्त अन्य सार्वजनिक जवाबदेही जिम्मेवारी निर्वाह कयल राजनीतिक पदाधिकारी तथा कर्मचारीक संपत्ति विवरण संकलन कऽ रहल छल। आयोग संपत्ति विवरण बुझेबाक म्याद आइ धरिक लेल तुकने छल। मध्य प्रदेश में 3 दलक गठबंधन सरकार के निरंतरता देबाक निर्णय कयल गेल अछि। नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी MLA आ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाक संसदीय दलक नेता सभक संयुक्त बैठक वर्तमान गठबंधन सरकार के निरंतरता देबाक निर्णय कयलक अछि। बैठक नेपाली कांग्रेसक संसदीय दलक नेता तथा मुख्यमंत्री कृष्ण प्रसाद यादव, MLAक संसदीय दलक नेता सरोज कुमार यादव आ नेकपाक संसदीय दलक नेता एवं अर्थमंत्री युवराज भट्टराय के नेतृत्व में रहल गठबंधन के निरंतरता देबाक निर्णय कयल जनौलक अछि। बैठक पश्चात संचारकर्मी सँ बातचीत करैत अर्थमंत्री तथा नेकपाक संसदीय दलक नेता भट्टराय अन्य प्रदेश में कांग्रेस आ MLA बीचक सहकार अंत भेलाक बावजूदो मध्य प्रदेश में एहि राजनीतिक समीकरण के कायम रखबाक सहमति भेल बतौलनि। ओ मध्य प्रदेश में 3 दलक बीचक सहकार के निरंतरता देबाक निर्णय भेल उल्लेख करैत MLA संघक सहकार नहि टूटबाक जानकारी देलनि। हुनका अनुसार MLA सरकार सँ बाहर भेला पर मध्य केन्द्रित दलक समर्थन लऽ सरकार टिकाओल जेबाक अवस्था आबि सकबाक कारणे वर्तमान गठबंधन के निरंतरता देबाक निष्कर्ष में दल सब पहुंचल अछि। MLA संसदीय दलक नेता यादव 3 दलक सहकार सँ प्रदेशक बजट पारित भेल चर्चा करैत अगला दिन में सेहो एहि सहकार के निरंतरता दैत आगू बढ़बाक बतौलनि। ओ अन्य प्रदेश में बनल वा ढहल गठबंधन सँ मध्य प्रदेशक राजनीतिक अवस्था फरक रहल उल्लेख करैत प्रदेशक स्थायित्व समृद्धि आ विकास के केंद्र में राखि के 3 दल बीच एकताक संग आगू बढ़बाक निर्णय कयल जानकारी देलनि। इजराइल में काज करय वाला के रूप में काम करबाक निकट भविष्य में 836 गोटे इजराइल जाय वाला भेल अछि। इजराइलक जनसंख्या तथा अध्यागमन प्राधिकरण आइ नेपालक लेल इजराइलक राजदूत सुमुलिक एरिवास, वैदेशिक रोजगार विभाग प्रतिनिधि तथा संचार माध्यम प्रतिनिधिक उपस्थिति में पहिल खेप में इजराइल जाय वाला कामदार श्रव्य दृश्यक माध्यम सँ चिट्ठा प्रणाली मार्फत छनौट कयलक अछि। एहिठाम स्थित इजराइली दूतावास जारी कयल प्रेस विज्ञप्ति अनुसार चिट्ठा प्रक्रिया में 115 गोटे सहभागी भेला पर 784 गोटे पुरुष आ 331 गोटे महिला चयन भेल अछि। एहि अवसर पर राजदूत एरिवास निकट भविष्य में थप 2100 सँ अधिक रोजगारीक अवसर पयबाक जानकारी देलनि। ओ घर में आधारित सिहार सेवा तथा कृषि श्रमिक संबंधी द्विपक्षीय सहमति
कार्यान्वयन के चरण में पहुंचल बतौलन। इजरायल आ नेपाल बीचक श्रम सहकार के थप सुदृढ़ बनेबाक दिस ई छनौट प्रक्रिया दोसर महत्वपूर्ण उपलब्धि भेल। जनबैत दुनू देश भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता, निष्पक्षता आ समान अवसर प्रति के प्रतिबद्धता दोहरौलक अछि। आब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान वार्ता में नहीं वापस होयबा धरि थप करा सैन्य कार्यवाही करबाक चेतावनी देलक अछि। रेडियो नेपाल सँ सुनै छलहुँ मैथिली भाषा में समाचार समाप्त भेल।

0: ये रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। अनुचित लेन देन तथा मीटर ब्याज पीड़ितों की मांगों के समाधान के लिए सरकार ने की वार्ता समिति गठित। प्रधानमंत्री नरेंद्र शाह ने महिला उद्यमी महासंघ के प्रतिनिधियों के साथ किया विचार विमर्श। कहा, सरकार महिला उद्यमिता के विकास में सहयोग के लिए है प्रतिबद्ध। शिक्षा मंत्री सस्मित पोखरियाल ने कहा, नई पीढ़ी और तकनीक को ध्यान में रखकर लाया जाएगा शिक्षा संबंधी विधेयक। और अमेरिका ने ईरान के उत्तरी ठिकानों को बनाया निशाना। जवाब में ईरान ने अमेरिकी सहयोगियों देशों पर किया हमला। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने अनुचित लेन देन तथा मीटर ब्याज पीड़ितों की मांगों के समाधान के लिए वार्ता समिति गठित की है। आज सिंह दरबार में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक ने प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय के सचिव पुष्कर सापकोटा के संयोजकत्व में वार्ता समिति गठित करने का निर्णय लिया। सूचना तथा संचार मंत्री डॉ. विक्रम तिमिल सिन्हा ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि समिति में अर्थ मंत्रालय, गृह मंत्रालय तथा भूमि व्यवस्था, सहकारी संघीय मामला एवं सामान्य प्रशासन मंत्रालय के सह सचिव सदस्य होंगे। मंत्रिपरिषद ने 1 और 2 रुपए के नए डिजाइन के सिक्के ढालने के लिए नेपाल राष्ट्र बैंक को स्वीकृति देने तथा नेपाल कानून सूचना पायलट प्रणाली की स्थापना के लिए कोरिया सरकार से प्राप्त होने वाली 1.81 मिलियन अमेरिकी डॉलर की अनुदान सहायता स्वीकार करने का भी निर्णय लिया। बैठक ने यह भी निर्णय लिया कि संरक्षित क्षेत्रों के भीतर राष्ट्रीय वन क्षेत्र में जहां पहले से मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त पेड़ या बिजली के पोल हटाने की आवश्यकता होगी, वहां प्रचलित कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद संबंधित मंत्रालय स्वयं अनुमति दे सकेगा। इसके अलावा विभिन्न मंत्रालयों के संगठनात्मक ढांचे और दरबंदी को स्वीकृति देने, नीति अनुसंधान प्रतिष्ठान विकास समिति गठन प्रथम संशोधन आदेश 2083 को मंजूरी देने तथा सेवा करार पर कार्यरत कर्मचारियों के प्रबंधन संबंधी व्यवस्था को स्वीकृति देने सहित कई अन्य निर्णय भी किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र शाह ने कहा है कि सरकार महिला उद्यमियों के उद्यमशीलता विकास के लिए हर संभव सहयोग करने के लिए प्रतिबद्ध है। आज प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय में महिला उद्यमी महासंघ नेपाल के पदाधिकारियों के साथ हुई विस्तृत चर्चा में उन्होंने कहा कि सरकार महिला उद्यमियों की समस्याओं का समाधान करेगी और उनके उत्पादों को देश के प्रत्येक पर्यटन स्थल तक पहुंचाने और उनका प्रचार प्रसार करने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करेगी। चर्चा के दौरान महासंघ के प्रतिनिधियों ने व्यवसाय के लिए अनुकूल वातावरण सुनिश्चित करने, वस्तुओं और सेवाओं को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने के लिए विशेष कार्यक्रम संचालित करने तथा व्यापार मेलों, प्रदर्शनियों, बिजनेस टू बिजनेस मैचिंग और निर्यात प्रोत्साहन कार्यक्रमों में अनिवार्य भागीदारी सुनिश्चित करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र शाह और राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के अध्यक्ष राजेंद्र लेंगदेन के बीच आज मुलाकात हुई। प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय में हुई इस मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के बीच समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। बैठक में रापरपा के अध्यक्ष राजेंद्र लिंगदेन के साथ पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष बुद्धिमान तामांग तथा केंद्रीय सदस्य एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य खुशबू ओली भी उपस्थित थे। संपत्ति छानबीन आयोग ने संपत्ति विवरण संग्रह और जांच संबंधी सभी कार्य फिलहाल स्थगित कर दिए हैं। आयोग ने आज सूचना जारी कर कहा कि सर्वोच्च अदालत के 31 आषाढ़ के आदेश के अनुसार रीट याचिकाओं पर अंतिम फैसला आने तक सभी प्रक्रियाएं रोकी गई हैं। बता दें कि आयोग पूर्व न्यायाधीशों, संवैधानिक आयोगों और नेपाली सेना के पूर्व अधिकारियों को छोड़कर अन्य पूर्व सार्वजनिक पदाधिकारियों की संपत्ति का विवरण एकत्र कर रहा था। शिक्षा तथा खेलकूद मंत्री सस्मित पोखरियाल ने कहा है कि सरकार देश की शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए दीर्घकालीन योजना के साथ ठोस कदम उठा रही है। चितवन के भरतपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि शिक्षा क्षेत्र का वैज्ञानिक और व्यवस्थित रूप से रूपांतरण किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि शिक्षा संबंधी नया विधेयक भविष्य की पीढ़ी और आधुनिक तकनीक को ध्यान में रखकर लाया जाएगा। मंत्री पोखरियाल ने यह भी कहा कि विदेश अध्ययन के लिए जाने वाले विद्यार्थियों को उचित परामर्श उपलब्ध कराने और शिक्षा क्षेत्र को अधिक व्यवस्थित बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
1: बाजु दर्शन
2: भाग्यवानी बाबु, राम्ररी आइपुग्नु भयो नि।
1: हजुर, राम्ररी पुगे। ऊ चाहिँ मेरो कलेजको बेस्ट फ्रेन्ड।
3: नमस्ते बाजु।
2: नमस्ते, आउनु न भित्रै।
3: हुन्छ बाजु।
1: अनि दादा त अफिस गइसक्नु भयो होला है?
2: उहाँ त बिहानै हो, हुन्छ तपाईँहरू फ्रेस हुँदै गर्नु न, म खाना तयार गर्दै गर्छु है।
1: हस् हस् भाउजू।
3: ओए वाइफाई होला नि, पासवर्ड माग्न।
1: है त पनि एनटिसीको सस्तो डे प्याक छँदैछ नि।
4: ए हो र,
1: एनटिसीको डे प्याक लिन *14## डायल गर्न।
5: नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
0: अब बाकी समाचार। सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपाल की संचालक समिति में उर्वशी वस्त्यात और शोभिता रिसाल को सदस्य नियुक्त किया गया है। सूचना तथा संचार मंत्री डॉ. विक्रम तिमल सिन्हा ने दोनों को नियुक्ति पत्र प्रदान करते हुए संविधान और कानून के अनुरूप निष्पक्ष, जवाबदेह और जनहित मुखी ढंग से कार्य करने का निर्देश दिया। अध्यक्ष की नियुक्ति होने तक संचालक समिति की सदस्य उर्वशी वस्त्यात को बोर्ड की बैठकों की अध्यक्षता करने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। मंत्री तिमल सिन्हा ने रेडियो नेपाल और नेपाल टेलीविजन के ऐतिहासिक योगदान का जिक्र करते हुए सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपाल को और प्रभावी बनाने पर जोर दिया। परराष्ट्र मंत्री शिशिर खनाल ने खनाल से भारत के विदेश मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव मुनु महावर ने आज मुलाकात की। दोनों के बीच नेपाल भारत के पारस्परिक हितों, दीर्घकालीन मैत्रीपूर्ण संबंधों और बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत बनाने पर चर्चा हुई। साथ ही उच्च स्तरीय संपर्क और संवाद को निरंतर बनाए रखने पर भी सहमति बनी। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री गौरी कुमारी यादव ने अमेरिकी कार्यवाहक राजदूत स्कॉट अर्बम से मुलाकात के दौरान नेपाली उत्पादों की अमेरिकी बाजार तक पहुंच सुनिश्चित करने का आग्रह किया। उन्होंने जल विद्युत, नवीकरणीय ऊर्जा, पर्यटन, कृषि प्रशोधन, उत्पादन मूलक उद्योग और डिजिटल अर्थव्यवस्था जैसे क्षेत्रों में अमेरिकी निवेश बढ़ाने पर भी जोर दिया। अमेरिकी पक्ष ने व्यापार सुविधा और निवेश प्रवर्धन के प्रति सकारात्मक रुख व्यक्त किया। शिक्षा तथा खेलकूद मंत्री सस्मित पोखरेल और नेपाल के लिए जापान के राजदूत मायदा तोरू के बीच आज शिक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। बैठक में सुरक्षित विद्यालय, डिजिटल और स्मार्ट लर्निंग, शिक्षकों की क्षमता विकास तथा विद्यालय स्वास्थ्य और पोषण जैसे क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर विचार विमर्श हुआ। जापानी राजदूत ने नेपाल के सार्वजनिक शिक्षा सुधार पहल में निरंतर सहयोग का भरोसा दिलाया। युवा, श्रम तथा रोजगार मंत्रालय ने आंतरिक रोजगार के अवसर बढ़ाने के उद्देश्य से निजी क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की। बैठक में कार्यस्थल आधारित प्रशिक्षण और प्रशिक्षु कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने पर जोर दिया गया। निजी क्षेत्र ने नीति निर्माण से लेकर प्रशिक्षण और प्रमाणीकरण तक अपनी भागीदारी बढ़ाने की मांग की। श्रम मंत्री रामजी यादव ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र को केवल दर्शक नहीं बल्कि विकास का साझेदार मानते हुए समन्वय के साथ आगे बढ़ेगी। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिका ने ईरान पर हमले और तेज कर दिए हैं। आज सुबह किए गए हमलों में उत्तर में स्थित ठिकानों को निशाना बनाया गया और अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहे एक जहाज पर भी गोलीबारी की गई। जवाब में ईरान ने क्षेत्र में अमेरिका के सहयोगी देशों को निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन हमले किए। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि हाल के अमेरिकी हमलों में 35 से अधिक लोग मारे गए हैं और 300 से अधिक घायल हुए हैं। पहली बार राजधानी तेहरान के आसपास के इलाकों में भी हमले हुए हैं। अमेरिकी हमलों में सेमरान प्रांत में ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल उत्पादन और अंतरिक्ष कार्यक्रम के केंद्र को निशाना बनाया गया। ईरानी सेना के प्रवक्ता कर्नल इब्राहिम जोल्फागरी ने धमकी दी है कि अगर अमेरिका ईरान में पुलों और बिजली संयंत्रों को निशाना बनाता है तो ईरान क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे पर व्यापक हमले कर सकता है। प्रवक्ता ने कहा कि किसी भी परिस्थिति में अमेरिका को होर्मुज जलडमरू मध्य में हस्तक्षेप की अनुमति नहीं दी जाएगी। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 29.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21.5 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अनुचित लेन देन तथा मीटर ब्याज पीड़ितों की मांगों के समाधान के लिए सरकार ने की वार्ता समिति गठित। प्रधानमंत्री नरेंद्र शाह ने महिला उद्यमी महासंघ के प्रतिनिधियों के साथ किया विचार विमर्श। कहा सरकार महिला उद्यमिता के विकास में सहयोग के लिए है प्रतिबद्ध। शिक्षा मंत्री सस्मित पोखरेल ने कहा नई पीढ़ी और तकनीक को ध्यान में रखकर लाया जाएगा शिक्षा संबंधी विधेयक। और अमेरिका ने ईरान के उत्तरी ठिकानों को बनाया निशाना। जवाब में ईरान ने अमेरिकी सहयोगी देशों पर किया हमला। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।
4: सादा खाना 100 रुपियाँ, मटन खाना 200 रुपियाँ। ओए, मोबाइलको डाटा पनि हामीले चलाएको मेनु अनुसार महँगो र सस्तो पर्नु पर्ने होइन र?
6: हुन्छ नि मित्र, फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, भाइबर, व्हाट्सएप जस्ता सामाजिक सञ्जालहरू मात्रै चलाउने हो भने नेपाल टेलिकममा असाध्यै सस्तो मूल्यमा सोसियल मिडिया डाटा प्याक पाइन्छ। डेली नै मजाले चलाउने
7: *1415# डायल गर्नुहोस्।
5: नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार।
8: झन्डु आयुर्वेद,
9: सबै रोगको आयुर्वेदिक पद्धतिबाट उपचार गरिने झन्डु नेपाल प्राली तथा विशेषज्ञ डाक्टर क्लिनिक, पुतली सडक, काठमाडौँ।
8: प्रेसर, सुगर, बाथ, डिप्रेसन, मोटोपन, युरिक एसिड, ग्यास्ट्रिक, पायल्स, दम, अनिद्रा लगायत यौनजन्य समस्याको उपचार गरिन्छ।
9: क्यान्सरका रोगीहरूको लागि पनि विशेष प्रकारको उपचार पद्धति उपलब्ध छ।
8: विशेषज्ञ डाक्टरको सल्लाह बमोजिम औषधि पठाउने र टेलिमेडिसियनको समेत सुविधा छ।
9: झन्डु नेपाल प्राली, पुतली सडक, काठमाडौँ, पद्मोदय स्कुलको पूर्वपट्टि। फोन नम्बर 01-4530-4418।